0: हाँ विवा, क्या बात है सर, बहुत
1: शुक्रिया। अमल लेने जो हाथ लाया भी दुख देने दे तो

0: शर्माऊं किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियां,
1: हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं
0: अपनी प्रेम कहानियां।
1: अच्छा किधर गाना है?
0: हिंदी हिंदी सो गया मेरा गांव मेरा देश मूवी।
1: ठीक है, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं मेरी प्रेम कहानी है, धर्मेंद्र दी फिल्म चो है। क्या बात है, कोई लब लेने सर, नो प्रॉब्लम। सो नंबर है अपना 905-673-3337, कॉलां कुछ कटियां गई असीं फिर तो कर सकते हो। 905-673-3337 नंबर है। ढिलों वीडियो नू याद रखो, ढिलों वीडियो ते करो स्ट्रीम। आईपीएल देखो जिथे भी हो, ट्रक ते हो, काम ते हो, घरे हो, इको अकाउंट दे नाल पांच वक्रियां डिवाइसिस ते आईपीएल देखो। करो स्ट्रीम डॉट सी ए, करो स्ट्रीम डॉट सी ए, 905-204-1313 करो स्ट्रीम डॉट सी ए। बियॉन्ड आईवर दे रोमी बाई जी एनकां चाहीदियां ने, आई डॉक्टर अवेलेबल ने, रोमी जी नाल तुसीं गलबात जरूर करो। एंड बियॉन्ड आईवर दी टीम 905-793-3937 ते थोड़े लिए हाजिर है। हम्बर वेस्टन गोरवे आई डॉक्टर अवेलेबल ने, डिस्काउंट्स लगे है, डायरेक्ट बिलिंग करो इंश्योरेंस दे नाल। 905-793-3937 दे उत्ते गलबात तुसीं जरूर जरूर जरूर रोमी होणां दे नाल कर सकदे हो। यार गीत दी रिक्वेस्ट आई सी, सुनदे हां दो बोल।